अरदास पे अमरदास गुरु, अमरदास गुरु अरदास पे, रामदास गुरु रामदास गुरु रामदास गुरु सचि साहिब। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह, श्री भगवती जी सहाय वास्ते, भगवती जी की पातशाही दसवीं, प्रीतम भगवती सिमरिके गुरु नानक लेती आए, फिर अंग गुरु थे अमरदास रामदास होए सहाय, अर्जुन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हराय, श्री हर कृष्ण दिया जिस धित थे सब दुख जाए, थे बहादुर सिमरिया गौर नौन आविताय सब ताई होए सहाय, दास में पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सब ताई होए सहाय, दास पातशाही आंधी जो थन थन थन, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पात रात दी अंदर के काउस जी बोलो जी सतनाम। पंजा प्यारियां छह सबसरिया छलिया मुक्तिया हत्या जपिया तपिया जिन्ना नाम जपिया वंद चकिया, देख चिल्लाही देख पाही देखे अंत कीता, थिना प्यारियां सचिया रिख माए ती अंदर के कास जी बोलो जी सतनाम। जिन्ना सिंगा सिंगनिया ने धर्म हित सिस्तिते, बंद बंद कताई खोपरी लहाया चराकिया ते चरे आर्या नाव चराही के, गुरुवारिया दी सेवा ले कुर्बानिया कीतिया धर्म नहीं हरिया, सिखी खैसा स्वासा ना निभाई थी नदी कमाए तदी अंदर के खास जी बोलो जी सतनाम। सारिया तख्त सरबत गुरुवारिया तदी अंदर के खास जी बोलो जी सतनाम। प्रित में सरबत खालस जी की अरदास है जी, सरबत खालस जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, चित आवे चित आवन खा सर का सर्व सुख होवे, जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रचार्यत, देख देख फतेह बिट की भेज पंथ की जीत, श्री साहेब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी सतनाम। सिखानु सिखी दान के स्थान, रहत दान बिबिक दान विसा दान भरोसा दान, दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहेब जी के दर्शन स्नान, छौंकिया जुंदे बुंगे जुग जुग ताल धर्म का जयकार, खास जी बोलो जी सतनाम। सिक्का धामा नेवा मातू जी मात फत धर राखा आप वाही गुरु, हे खाल पुरख अपने पंथ रे सरा सहाई दर्जो, श्री नंकान साहब दे होर गुत वारे गुत धम्मा दे, जिना तू पंथ नु विचोरिया आ गया है खुले दर्शन दिला दे सा सेव संभा, दादा खालस जी ने बख्शो, हे न माने रे मान ताने रे धाने ओ ते ने ओ सच्चे पिता आप वाही गुरु। Waheguru, beloved Waheguru, we stand in your glorious presence this morning, our hearts filled with your love, with gratitude, with joy, with celebration for all the many, many gifts that we experience from you with every breath we take. May we be blessed to always see you in all and serve you in all this day and every day. May we vibrate your holy name in consciousness and love and devotion to you. May we know that you are the doer, you are the creator, you are our beginning, middle, and our end. And may we live in this joy of Charikala that you have so generously bestowed upon us through our beloved guide and teacher, the Siddhi Singh Sahib Bhai Sahib Harbhajan Singh Khalsa Yogi Ji. May we celebrate these teachings every day of our lives. May we be ever eternally grateful for them. May we serve them. May we see them spread through us, in us, all around us to this entire planet, lifting us up into your glorious realm always. May we live in Charikala in brotherhood and sisterhood and peace and harmony and justice and righteousness for all, everyone on this planet, by your grace, by your great kindness, Waheguru. We live to see this day and we know that it's coming, it's here, and may we just help to manifest it with all of our love, Waheguru. This morning, we're gonna chant a call for Mr. and Mrs. Bustos, who died in a car accident. They are our neighbors. Please chant, inhale to chant a call.

सुई सुई सदा सच साहिब साचा सची नाई हैपी हो सी जाय नासी रचना जिन रचाई रंगे रंगी पांदे कर कर जनसी माया जिन उपाई कर कर दिखै कीता अपना ज्योत सदी वड्याई ज्योत सपावै सुई कर सी फिर हुक्म न करना जाई सो पातशाहो शाह पात साहिब नानक रहन रजाई आसा महला पहला सुन वड्डा आखै सब कोय केवर वड्डा डीठा होए कीमत पाए न कहिया जाए कहना वाले तेरे रहे समाए वड्डे मेरे साहेबा घेर गंभीरा गुणी गहीरा कोई न जाने तेरा केता के वड्ड जीरा रहाऊ सब सूरती मिल सूरत कमाई सब कीमत मिल कीमत पाई ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई कहन न जाए तेरी तिल वड्याई सब सत सब तप सब चंगे आईया सदा पुरखां क्या वड्याईया तुद मन सदीक नैन पाया करम मलै नाही ठाकर आईया आखन वाला क्या बेचारा शिव दे परे तेरे भंडारा जिस तू दहै तिसै क्या चारा नानक सच सवारण हारा आसा महला पहला आखा जीवा विसरै मर जाऊ आखन औखा सचा नाओ साचे नाम की लागै भूख उद भुखै खाए चलिए दुख सो क्यों विसरै मेरी माए साचा साहिब साचा नाय रहाऊ साचे नाम की तिल बड़े आई आखत के कीमत नहीं पाई जे सब मिलखै आखन पाहे वड्डा न होवै काठ न जाए ना उमरै न होवै सोग देंदा रहै न चूकै भोग गुण एहो होर नाही कोए ना को हुआ ना को होए जे बट आप ते बट तेरी दात जिन दिन कर कै की ते रात खसम सार है ते कम रात नानक नावै बार सनात राग गुजरी महला छूता हर के जन सतगुर सतपुरखा बनाओ गुराओ गुर पास हम कीरे किरम

काहेरे मन चिदव उदम जाहार हर ज्यो परिया सैर पथन मह जंत पाए ताकार जग अगै कर तरिया मेरे माधव जी सतसंगत मिले सुतरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सुके काष्ट हरिया रहौ जानन पिता लोक सत बिनता कोय न किसकी तरिया सिर सिर रजक संबाहे ठाकुर काहे मन पो करिया ऊडे ऊड आवै स कोसा तस पाछ बचरे चरिया तन कमन खलावै कमन चुगावै मन मह सिमरन करिया सबन धान दस्त अष्ट सिधान

हर हर रूप समासी। से तन जन हरत्याया हरि, जिन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी, बरे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहंत जी, हर अनेक अनेक अनंता। तेरे अनेक करह हर पूजा जी, तप तप है जप है बेअंता। तेरे अनेक परह बहु सिमृत शास्त्र जी, कर क्रिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी, जो पाव है मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख परम्पर।

तुम करता सचार में डांस आई, जो तो पावै सोई थी सी, जो तुम दह सोई हो पाई रहाऊ, सब तेरी तुम सबनी ते आया।

आपे करता तेरा कियास बहुए, तुद बिन दूजावरन कोए, तू कर कर भी कहे जान है सोए, तिन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला तित सरवरले पीले वासा, पानी पावक तिन्ह किया, पंकज मोह पग नहीं चाले, हम दिखा तह डूबी अले, मन एक नचेत मुड़ मन्ना, अरब सिरत तेरे गुण गलियार आऊ, ना हो जति सती नहीं पड़िया,

साध संगत पज के वन नाम सरंग जाम नाग पव जल तरन कै जन्म वृथा जात रंग माया कैर आऊ जप तप समझम।

नमस्कार है ताहे हमारा, जमन कान सब जगत बनायो, देव दैत जछन पुजायो, आदंते कैव तारा, सुई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तसही को हमारी, सकल प्रजाजन आप सवारी, शिव कान को शिव गुण सुख दियो, सतरन को परमो बदकियो, कट कट के अंतर की जानत, बले बुरे की पीर पहचानत, चीटे थे कुंचर असतुल्ला, सब पर कृपा दृष्ट कर भुल्ला, संतान दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पहचान, कट कट के पट पट की जान, जबूद खरक करा कर तारा, प्रजा दर्त तब देह पारा, जब आखरक करत हूँ कब हूँ, सम तुम मैं मृत दे तर सब हूँ, जेते बादन सृष्ट सब तार, आप अपनी बुझ उचार, तुम सब ही ते रहत निरानम, जानत बेद पेद अरहानम, निरंकार निर्विकार निर्लंब, आदनीन अनाद असंभ, ताका मूर चारत पेदा, जाको पेवन पावत बेदा,

कहत सदाशिव निरंकार का चीन तनहिब आप आपनी बुद्ध है रेती बरनत पिन पिन तिह तेती तुमरा लखान जाए पसारा के बुद्ध सज्जा प्रथम संसारा एक रूपानूप स्वरूपा रंग पयावराव कही पूपा अंड जजे रज से तजकीनी उत्पुज खान बहोर चदीनी कहूँ फूल राजा हुए पेठा कहूँ समत बियो शंकर कैटा सगरी सृष्ट दिखाए अचंब वाद जुगाद स्वरूप सियंब अब रचा मेरी तुम करो सिखियो बार असिख्य संघरो दुष्ट जिथे उठवत उत्पाता सकल मलेच्छ करो रन काता जिस तुज तब शरणी परे तिनके दुष्ट दुख तो है मरे पूर्ख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे।

कृपा दृष्ट तन जाहे निहारि हो ताके ताप तनक मह हरि हो रिद्ध सिद्ध करमो सब हुई दुष्ट छाच वास कैन कोई।

चौपई सम्मत सत्रह सहस बणिजा अर्ध सहस फुन तीन कहिजा भाद्रव सदीष्ट मीरव वारा तीर सतुद्र ग्रंथ सुधाराम।

एक कह मत एक न मानियो दोहराम। समृत शास्त्र भेद सब बहु भेद कह हम एक न जानियो। श्री असपान कृपात मरी कर मैन कहियो सब तुह बखानियो दोहराम।

राम क्रीम महला तीजानंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सतगुर मैं पाया सतगुर तपाया सहर सेती मन बजिया वाधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावन आइया शब्दोत गावहो हरि केरा मन जनी वसाइया।

पुंचा तिस कहो उधारो एह वसत तरीन हराई नित नित राखूर धारो तम संसार चरण लग तरिया

मन मन थीवा हरे आपोड़ी तिथै तू समर्थ जिथै कोह नाहे उथै तेरी रख अग्नि उदन माहे सुनखे जमके दूत नाए तेरे चट जाहे भौ दर्पखम सगाहो गुर शब्दी पार पाहे जिनको लगी प्यास अमृत से खाहे कलम है पुन गुण गोबंद गाहे सब सैनो कृपार समान है साहे साहे वृथा को न जाए जिया वै तुद आए सुरोक महला पंजवा अंतर गुर आराधना जिहवा जप गुर नाऊ नेत्री सतगुरु पेखना सरमणी सुनना गुरु नाहो सतगुरु